0: अरे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: Sunrise Retro, London's retro Asian mix.
1: सुनो सुनो अरे सुनो सुनो ए भाई और बहनो अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो ओ राघोबा ओ धोंडीबा आई का ओए जर्नल सिंह अरे तुझी भी सुनो पापे।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: ऐ मेरी हमरक्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: Global travellers, not just travel, because every story deserves an unforgettable journey. Attention, interior designers, architects, builders, contractors, developers. Are you tired of thin margins? This one is for you. The UK's first to bring an entire project under one roof. Kitchens, bathrooms, tiles, lighting and automation, and much more. All bespoke with margins built in for you. Saturday, 19th September, Casa Vera hosts the Interiors and Construction Exhibition in Isleworth, West London. Exclusive trade offers across every product. Give your clients more and stand out. 11am to 4pm. Register free at casavera.co.uk.
1: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
2: लंदन का रेट्रो एशियन मिक्स सनराइज रेट्रो को सुनने के लिए शुक्रिया हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज रेडियो को सुनना मत भूलिएगा ऑन 963 एंड 972 एएम इन लंदन नेशन वाइड ऑन डीएबी दुनिया भर में वाया sunriseradio.com फ्री सनराइज रेडियो ऐप पर या फिर अपने होम स्मार्ट स्पीकर्स या रेडियो प्लेयर एंड नेशन प्लेयर ऐप पर एडवर्टाइज ऑन सनराइज रेट्रो टुडे लंदन रेट्रो एशियन मिक्स कॉल द सनराइज रेट्रो सेल्स टीम ऑन 020-8574-7777
3: ये है सनराइज रेट्रो

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर, चैन, आराम, राती, सुबह, दोपहर और शाम, छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप खोल नहीं पाते हैं, देखो ना दर्द, हिंस और जख्म दे जाते हैं, तो आप कुछ नहीं कहते हैं।

0: Sunrise Retro, London ka Retro Asian Mix.
1: Attention!
2: Craving something truly delicious? Well, I've got some amazing news. For this September only, a free £30 credit. You can now get General Bilimoria's Canteen, serving fresh your favourite authentic Indian dishes, delivered right to your door. Just search General Bilimoria's Canteen on the Google Play Store or Apple App Store to download our brand new app and order your next incredible meal. No delivery fee, no service charge when you order through the GB Canteen app. And for this September only, when you download the app, you will receive a generous £30 credit. Terms and conditions apply.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: Thank you for tuning in to Sunrise Retro, London's Retro Asian Mix. Don't forget to listen to our sister station, Sunrise Radio, on 963 and 972 AM in London, nationwide on DAB, worldwide via sunriseradio.com, on the free Sunrise Radio app for your home smart speakers, and for the Nation Player and Radio Player app.
5: London's Retro Asian Mix, Sunrise Retro.

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

0: सनराइज रेट्रो लंदन का रेट्रो एशियन मिक्स। सनराइज रेट्रो लंदन के रेट्रो एशियन मिक्स को सुनने के लिए शुक्रिया। याद रखिएगा, हमारे सिस्टर स्टेशन सनराइज हिट्स को भी आप सुन सकते हैं। द यूके स्मूथेस्ट एशियन हिट्स नेशन वाइड ऑन DAB, ऑन द फ्री सनराइज रेडियो ऐप और ऑनलाइन sunriseradio.com पर। एडवर्टाइज ऑन सनराइज रेट्रो टुडे, लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स। कॉल द सनराइज रेट्रो सेल्स टीम ऑन 020-8574-7777।
1: लंदन्स रेट्रो एशियन मिक्स सनराइज रेट्रो।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे, समझे
0: समझे।